गली गली नगर नगर भटक रहा है तू अगर दुआ तेरी कबूल हो जो चाहता है तू अगर यजीदियों को छोड़ आ हुसैनियों में बैठ जा।